प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री गणेश प्रथम पूज्य देव हैं। अतः किसी भी कार्य से पहले इनकी वंदना और आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग सच्चे दिल से इनकी वंदना करते हैं, उनकी जिंदगी हर विघ्न बाधाओं से मुक्त एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अतः हम सबों को इनकी वंदना सच्चे दिल से करने चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर इनकी वंदना करते हैं।

0: शुरू में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: पर सर्जन। वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस चमक जाओ।